छिल अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत विच

परमेश्वर नु भी कई नाम देते थे और तेरा तुफंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैथी भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरशी है, तू ही तबर है, तू ही

इन्हों पहाड़ी राजिया ने मुगलां दे नाल मिल के हमला किया। पहाड़ी राजिया ने जंग का ऐलान कर दिता। रंगड़ा गुजरां नूं भी अपनी फौज विच शामिल करके आनंदपुर साहब ते हमला बोलिया। जद सिखां ने आनंदपुर ते हमले की खबर सुनी तां गुरु नूं प्यार करन वाले अपने हथियार लै के अपने शस्त्र लै के आनंदपुर साहब नूं चल पए। माझे ते मालवे

एक बरछे दा नां जिदा गुमू सप दी तरह सह बन के अबचित्र सिंह ऐला साडी नागनी और तू हाथी दा मुकाबला करना है। भाई बचित्र सिंह ने मथा टेकया गुरु तू थापड़ा लिया।

कहने लगे भाई अड तो तू मेरा भाई है। अपना भरा बना लिया, अपना भरा बना के इतना मान दे दिता कि भाई साहब की बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है। जिथे आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करने आ उत्थे भाई साहब भाई मरदाना जी नूं भी नमस्कार हुंदी है। प्रोफेसर प्यारा सिंह जी पदम ऐसा जिक्र करदे ने। सो मैं जिक्र कर रहा निमाणिया दा माण। फिर धन गुरु नानक पातशाह ने भाई साहब भाई लालो जी का कुंडा आप खटखटाया। लालो सतकरदार, भाई लालो तन रंकार, कहने ने आवाज आई बाबा भंडारा अगे है, ये तो एक गरीब का घर है। सतगुरु कहन लगे ना भाई मैं भंडारा खान नहीं आया, मैं ते तेरे कोल आया। बुआ खोलो, जो तो बुआ खोलिया ते वेखदा है धन गुरु नानक पातशाह सामने खड़े ने। जी आया आखिया, प्यार नाल अंदर बिठाया। धन गुरु नानक पातशाह ने इस निमाणे नूं भी मान बख्शे, क्योंकि वह है ही निमाणिया का माण है। संपूर्णता धन गुरु अर्जन साहब दे रहे ने। ध्यान देना भाई मरदाना ते भाई लालो जी नूं गल नाल ला के गुरु साहब ने निमाणिया नूं मान दिता। धन गुरु अर्जन साहब हुण की कर रहे ने उन्हां पिछड़ियां जातियां नूं जिन्हां नूं समाज ने दुरकारिया होया सी, साध संगत उन्हां नूं गल नाल ला लिया। अपनी गल नाल ला के इतना सन्मान दे दिता, अपने नाल बिठा के अपने वर्गा दर्जा दे दिता। अज तुहाडे समक्ष दास केवल इतनी ही बात रखणगे कि तुसी वेखो निमाणिया नूं मान किवें मिलदा है। जिहड़ा इस दर ते निमाणा बन के आउंदा है उहनूं गुरु घर वल्लों मान किवें मिलदा है, इज्जत रिस्पैक्ट किवें मिलदी है। हुण सतगुरु जी बाणी विच कहिंदे ने

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे ने

कबीर गुरु धारण कर लें ते स्वामी रामानंद जी कहते ने एक दिन उठे की वेखते ने स्वामी रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा इशनान जाते ने कहिंदा क्यों ना ऐसा होवे कि मैं इन्हां तों पहले उठ पवां जे इन्हां कोलों कुछ लैणा ही कबीर इन्हां तों पहले उठ ते जिस रस्ते जांदे ने उस रस्ते विच लम्मा पैगा हो सकदा है तेरे ते नदरे करम हो जाए कबीर बरसाती ओ सिंगड़ा जिहा रस्ता ओदे विच लम्मे पै ने स्वामी रामानंद जी पौवां ते सवार अमृत वेला तुरे आउंदे हुण जिस वेले स्वामी रामानंद जी आए स्वामी रामानंद जी दे चरणां दी छो होई हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन पे है इन जापदा जिवें कोई मृतक शरीर है ते साध संगत चरणां दी छो लगन दी देरी सी अज अपने मुखो एक बचन कहा उठ राम के लोका राम को बस इनी गल कहण दी देरी सी कबीर ने माला फड़ ली राम राम राम शुरू है साध संगत हुण भगती करदे आ जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वालिआं ने तकिया हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है कबीर नूं दिखिया किन्ने दित्ती है यह माला किवें फड़ के बह गया यह ते नाम नहीं जप सकदा क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने यह उपदेश दे दिता कि उचिया जातां वाले ही नाम जप सकते ने छोटी जात वाला नाम भी नहीं जप सकता सत संगत हुण ध्यान देना पुछ कीती तेरा गुरु कौन है कहन लगा जी स्वामी रामानंद जदों स्वामी रामानंद जी का नाम लिया कहन लगे ए हो ही नहीं सकता ओ ते शूदर नूं मत्थे नहीं लांदे तेनू किवें दिखिया रिड़ती कहन लगा मेरे ते यकीन नहीं ते जाके स्वामी नूं पुछ स्वामी रामानंद जी पास आए कहन लगे स्वामी जी कबीर कदों शिष्य बनाया करो दीख्या दित्ती जे कह लगे कबीर मेरा शिष्य नहीं है मैं दीख्या नहीं दित्ती कह लगे महाराज ते तुहाडा नाम जप रहे कह लगे बुलाओ कबीर नूं हुण कबीर नूं बुलाया ना जिस वेले स्वामी रामानंद जी ने एक पर्दा तान लिया एक पासे स्वामी रामानंद जी ने एक पासे कबीर है विच पर्दा है ते साध संगत मैं पर्दे का जिक्र कर दिया पर्दा एक भरम है ख्याल करना पर्दा एक भरम है हुण वेखो यह भरम हटदा किवें कबीर कण तेनू दीख्या दित्ती कहन लगे स्वामी जी अमृत वेला याद करो उस दिन दा अमृत वेला याद करो जिस वेले अमृत वेले तुसी चरणा दी छो दे के मैनू अपने मुखो आख्या उठ राम के लोका राम को यह दीख्या नहीं तो और की है बोलो राम सिख समझाई तुसी राम इन्हां दे कन्नां विच कहिंदे हो मैनू उच्ची आवाज नाल तुसी के ते मैं राम दा नाम जपन लग पे कहिंदे ने स्वामी रामानंद जी कहन लगे पर्दा हटा दियो गिरा दियो इस पर्दे नूं ओ भाई जिन्हां नूं मैं नाम दित्ता ओ अज तक इस अवस्था विच नहीं पहुंच सके स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने कबीर नूं ते मैं अचनचेत राम दा नाम दित्ता पर इहदे हिरदे विच इंज नाम वस गया है कहन लगे कबीर सब तो उच्चा हो गया है

0: क्यों कर में ले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलिता।
1: भगत भगत जग बजी, सारे जगत विच भगत भगत होने लग पे है। क्यों? चाहो चकां दे विच चमरेटा पाणा गंडे राह विच।
0: काम की है पाणा कहिंदे ने पैर दियां जुतियां गंढदे हन चुराहे विच बैठे,
1: पर ख्याल करना ये केवल जुतियां नहीं गंढदे, ये टुटे लोकां दे मन गंढदे हन।
0: पाणा गंडे राह विच कुला धर्म टोए टोर समेटा, कुल दा धर्म की है काम की है। टोर पशु डंगर मर जाना खाल उतार के जुतियां बनानी है। रविदास जी कौन ने ज्यो कर मैले चिथड़े, मैले कपड़िया दे विच हीरा लपेटिया हो, ज्यो कर मैले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। अमोल जिदा मुल कोई नहीं है, ऐसा हीरा है भगत रविदास। फिर कर दे की ने
2: चौवरना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेता, नावण आया संग मिल बनारस कर गंगा थेटा।
0: बनारस तट ते कहने संग नाल नाउण आ गए। जिस वेले नाउण वास्ते आए वेखदे की ने के बड़ा सुंदर मेला लगा, ते मेले विच लोग दान पुन कर रहे ने, ते पंडित जी बैठे दान हो कर रहे ने, कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई रुपा दे रहा है, अपनी वक्त अनुसार हर कोई दान ते लगा है। हुण भगत जी कहिंदे ने कि मैं भी तट ते आया, मैं भी कुछ दान करा, पर देखना भगत जी दे दान करन दा ढंग कैसा है। भगत जी दान इसलिए दे रहे ने कि उन्हां लोगां नूं समझा सका, जिहड़ा दान तुसी पानी विच सुट रहे हो ओ भाई ओ किसे अर्थ नहीं लग रहा। क्रांतिकारी भगत उन्हां नूं ज्ञान देंदे हुए ए गल समझांदे ने

उपमा महा कलगीधर बादशाह कहिंदे ने अकाल पुरख तू राजियां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने, कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असीं भी इस शहर दे अंदर दाखल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

वैसा महल उसर जांदे, फुल भी लगे नहीं, फुहारे भी नहीं, फुल तोड़ लो उदी जगह दूसरा फुल आ जाएगा, क्योंकि इत्थे मौत नहीं। इस शहर बारे भगत रविदास जी आपां नूं कुछ ज्ञान करवांदे ने कि इह शहर कैसा।

तेरे द्वारे ते आए हैं, तेरे बगैर साड़ी सुरत किन्ने लैनी, कृपा कर किवाड़ खोल ते सानू दर्शन दे।

0: ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नी संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारा संगता दर्शन करने वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, हर थां रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारियां विच व्यापी हुई है। तिस ते चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारियां अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस के चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारियां अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनान वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण में आ तेरी सरन विच आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, तो तू ही उस लैन से ना तुरी, तू वह आरती करनी है जिहड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। कि आरती है? सतगुरु पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उस दी करनी है जिस दे दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देव है, पर ब्रह्मा भी उस दे दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बरमा निगम, निगम दा भाव है वेद। ठांडा परमा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बार है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे पुजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती दी समझ कोई बिरला ही जान सकता, किसे विरले दी ही समझ ए गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा, कोई इस गल नू बुझ सकता है। हर किसे दे वस दा रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सा, तीन चार चीजां दा दीवा बालन लई तीन चीजां दी लोड़ हुंदी है, तेल दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिना तेल पाया ना, इत्थे तत दा पाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम की आबादी, कहिंदे ने जिहड़ी विच वट्टी है ना, वह मैं नाम दी पाई है, ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना हुण, इत्थे दीपक आटे दा नहीं है, मिट्टी दा नहीं है। कईयां ने अपनी समर्था मुताबक स्टील दा, कोई चांदी दा, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने, पर भगत कबीर जी कहिंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तत तेल नाम की आ बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं इस तन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालक, हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ए जोत कदों जगी? जदों असी जगत तारन हार दे नाल जुड़ गए, क्योंकि जब तक परमात्मा नाल जुड़िया ना जाए, जोत नहीं जगदी। आ तुसी वेखदे हो, कई बार तीन चीजां होण, दीवा बत्ती तेल, जब तक बालन वाला ना ना होवे, दीवा नहीं बनता।
दीवा अपने आप कदी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मेलना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना विचों बत्ती कढ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा होवे दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दईए दीवा ना होवे दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होण दीवा भी होवे विच बत्ती भी होवे तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बलता। बालण वाला चाहिदा है। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा तां बलना है ए जोत ने उजियारा तां करना है जद तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा तो यह दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई बिरला इस गल नूं बुझदा है कि यह जिहड़ी जोत है मालिक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी पंचे शब्द अनाहत वाजे। ए अनहद वाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार वज रहे हैं क्योंकि मालिक तेरी कृपा हो गई। पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजे। अनहद ये जिहड़ा अनहद नाद है ये अंदर वजदा है। ते भगत कबीर जी कहिंदे ने मालिक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनाहत वाजे एक रस एक तार वज रहे ने। ते ये पंच वाजे केड़े ने पंच साज केड़े ने तंती साज ते साध संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ धातु दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ फूक मारन वाले साज। ये पंज प्रकार दी साज ने पंचे शब्द जिन्हां नूं कहिंदे ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती दा मन बनिया किस नूं संपूर्णता विच कीता जाए। फिर तन्ना जी दा भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल कीती धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहिंदे ने इस आरती नूं करन वास्ते चार चीजां दी लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिहनूं जलाया जांदा है ये चार चीजां जिहनूं कहिंदे ने कठियां हो जाण फिर ये दीवा बाल के आरती कीती जांदी है। लेकिन ये जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार हुंदी है उहदा कोई जिक्र मैं अज पढ़ रहा सां इस प्रकार मिलिया। कहिंदे ने चार वरी ये जिहड़ा थाल है ना चरणा ते कमाया जांदा है चार वरी ते दो वरी ये नाभी तक इस थाल नूं कमाया जांदा है ते उपरंत एक वार मुंह ते मुख ते कमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार कमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया है कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे ने। इह नहीं कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुरु कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझी ना हमेशा जगदा रवे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालिक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालिक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोलों कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोलों कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
क्योंकि अगे लफज आरती चल रहा है। ये आरता क्यों है? ये ना समझ लेना एक काव्य रस है। जिवें कवि कोई काव्य लिखता होवे ना, उन्हें अपने फिक्रे नूं लवाना हुंदा है। हुण अगे लफज की है? गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। क्योंकि लफज तां पूरा हुंदा है। ए दास तन्ने वालों हे मालक तेरे अगे बेनती है। गोपाल तेरा आरता किस लई? जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। हुण एक गल मैं तुहाडे समक्ष ए रखना चाहना, भगत तन्ना जी ने इत्थे विश्वास दस्सिया है भई जेड़े तेरे परमात्मा भगती करते ने, मैनू यकीन है, मैनू भरोसा है, मैनू अकीदा है, तेरे ते फेत है, तू उन्हां दे कारज आप सवारना है। तिनके काज सवारता। हुण कहिंदे ने मेरियां मंगां की ने? सतसंग ध्यान देना। दाल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। हे परमात्मा अकाल पुरख, मैं तेरे दर तो आरता करके ए दात मंगदा हां, दाल सीधा मांगो कियो। दाल तुसी सारे जानदे हो, जिन्हों दाल ते रोटी दा सेंस दुनिया दा सब तो वड्डा है। कहिंदे ने दाल ते सीधा कहिंदे ने आटे नूं। दाल सीधा मांगो कियो, हे परमात्मा घ्यो भी दे। हुण ए जे तीन चीजा तू मेनू दे दे, हमरा खुशी करे नित जीओ, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। साध संगत ए ते बिल्कुल सियाणी गल है। वो जिदे घर खान नूं ना होवे, उहनू भगती कित्थे सुझदी है? उहदा मन कुड़दा रहिंदा है। कहिंदा हे परमात्मा एवें संसार विच भेज दित्ता ही, खान नूं ते दित्ता कुछ नहीं। जे कुछ खान नूं देवे तो तेरी भगती करा, हुण खान नूं ते लभदा नहीं, तेरी भगती की करा? इसलिए भगत तन्ना जी कहिंदे ने, हे मालक तेरी भगती भी तां होवेगी, मैनूं ए चीजां दे, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। हुण भगत जी कहिंदे ने इत्थे ही बस नहीं, हे परमात्मा कुछ मंगा होर भी ने। पनिया छात्र निका अनाज मंगो सद सीका। पनिया दा पाव है पैर। हे मेरे परमात्मा, मैनू पैरां दी जुत्ती बड़ी आला चाहिए है। पनिया छादर निका, हुण छादर कहिंदे ने तन दे कपड़िया नूं। पैरां दी जुत्ती अच्छी होवे, तन ते कपड़ा अच्छा होवे, सिर ते पग सोहनी होवे, वेखण वाला भी कहिंदा कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी विच आया है। क्योंकि अड दी दुनिया दी निगाह सिर तो लैके पैरां तक जाती है। ते भगत कहिंदा हे परमात्मा, जिहड़ा मैनू वेखे वह मैनू वेखदिआं तेनू याद करे, मैनू वेखदिआं तेनू याद करे। जे परमात्मा दा भगत ऐसा है ते परमात्मा की पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका। पैरां दी जुत्थी अच्छी होवे, तन दे कपड़े अच्छे होण, ते अनाज सोहनी धरती वाई दा मैनू चाहिदा है। अनाज भी इहो जिहा ना होवे, अच्छी धरती वाई दा। अनाज मंगो सत सीका। फिर कहिंदे ने गौ पैंस मंगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। हे मेरे मालक, एक गौ चाहिदी है, एक पैंस चाहिए, पर सजल सुई, सजल सुई हुई। कहिंदे इहो जी मैनू दे देवी, गौ पैंस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहिंदे ने अरबी घोड़ी। तेरे भगत नूं घोड़ी भी चाहिए है असवारी वास्ते। बस हुण इंज समझ लो, उस वेले घोड़ियां सन, इस वेले आ मोटरां कारां। कितनी कितनिया महंगिया, कितने कितने नाम ने उन्होंने, जिहड़े गिने नहीं जाते। पर उस वक्त अरबी घोड़ी सब तो आला गिनी जाती सी। गौ पैस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। अंत विच कहिंदे ने हे परमात्मा, आ डिमांड ध्यान नाल सुनी। कर की केहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी।
भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जो हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा है भगता जो मंगी जाएगा दे जावांगा, क्योंकि उन्हें अपने वस विच कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनू घरवाली चंगी चाहीदी है, क्योंकि घरवाली का बहुत साथ हुंदा है भगती विच। जे घरवाली ना चाहे तो खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। यह जिन्हें भी भगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने उन्हां दीआं घरवालीआं दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गिहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के लई। हुण अगे चलिए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे होए कह रहे ने कि हे परमात्मा, मैं तेरी आरती इसे लिए कीती है कि मैं भी गृहस्थी हाँ, मैं भी बाल बच्चरदार हाँ, मैनू भी कुछ चाहिए। हुण परमात्मा कोलों की मंगे है? भगत कबीर जी बड़ा सुंदर कहिंदे ने, आओ सरवण करिए। सौरठ भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। भगत जी ने गल बड़े कमाल दी रौंगी, कहते नहीं दे परमात्मा अकाल पुरख आला फाण अपनी माला, भुखिया तो भगती नहीं होंगी, क्योंकि मन रजा होवे तन रजा होवे भगती भी फेर ही होंगी। भुखे तो भगती नहीं होंगी, फड़ लै अपनी माला, मैं नहीं तेरी भगती कर सकता। सोरठ भूखे भगत ना कीजे, ये माला अपनी लीजे फड़ माला। पर कहते नहीं मेरी मंग कैसी है? हाँ मांगो संतन रहना, मैं ना ही किसी का देना। कहते नहीं मैं तेरे को मांगना संतां दे चरणां दी धूल, ये मेरे मस्तक ते लग दी रहा है। हाँ मांगो संतन रहना, पर नाल मैं ये भी कहना मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का देना ना हो। कई बार होंदा है कि बंदा भगती ते बैठा होंदा है, लैण वाला बूहे ते आ खड़ोंदा है, वह बाहरों बूहा खड़का रहा होंदा है, खोल पई बूहा मेरा देना मैनू दे, कहिंदा हुण किथे मन लगदा है? नहीं लगदा। मैं नहीं किसी का देना, मैं किसी का देनदार।

पारिक अनक लख बरिया अन थोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए।

सिमरन करन वालियां दे सामने उसकी कोई वाह चल ना सकी, क्योंकि बाबा जी जिथे भी डेरा लाउंदे सन, जिथे भी आपने चरण पाए, सास

मन दा गुलाम होयो तां साडे मन दे साडे गुलामां दा गुलाम ही तू होयो ना। जिन्हां ने अपने मन नूं गुलाम बना के चंगे पासे मन नूं लाया, आत्मा नूं कीर्तन दा भोजन दिता है, वो सदा लई अमर हो।